Radio Olive 106.3 FM. Gio Bendaz. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

टेन मैन की यहाँ कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: तन्वीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Denisha. Denisha.
1: राहत फतेह अली खान साहब और तुलसी कुमार की आवाज़ में तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई। वीकेंड गया है, एकदम रिफ्रेश्ड फील कर रहे होंगे तो ये गाना हमारी तरफ से वीकेंड को। गुड मॉर्निंग मेरी जान, संडे का दिन है, सितंबर 13th। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM। तनीषा आ गई आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर। आई होप यू गाइस हैव हैड एन अमेजिंग वीकेंड और ये वाला वीक भी बहुत अमेजिंग जाएगा। फुल पॉजिटिविटी और फुल एंथुजियाज्म के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे तो सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, है ना।
2: जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं।
1: दीपाली सहाय की आवाज में ये खूबसूरत गाना कुछ ही देर में आने वाला है।

0: इतना क्रेजी कर दिया था भाई, जो रील आप स्क्रॉल करो हर दूसरी रील पे यही गाना था. एंड यू नो सेम काइंड ऑफ कोरियोग्राफी मैंने बहुत ट्राई की, मुझसे नहीं हो पाया.
1: जल्दी है तुम कहां पे, देखो यहां के रास्तों में.
0: डू आई नीड टू से एनीथिंग अबाउट दिस ट्रैक? आई एब्सोल्युटली

दिस वंस फॉर ऑल ऑफ यू. जी हाँ, तो फटाफट से आ जाओ मुझे ऐसे यू नो टेक्नोलॉजिकली मिल लो ना, ओके व्हाट्सएप कर दो मुझे, इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास है उसका. 3311 1063 पर एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दीजिए, मेरा भी मॉर्निंग बना दीजिए, मैं तो आपकी बना ही रही हूँ ये कमाल गाने चला के. सुन रही है रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Qatar, are you ready? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए. शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स. अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स. इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं. वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग.
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ.
3: ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ,
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲਵ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ.
0: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ. हर सुबह 6 से 10 हर जिस तनिशा को बिंदास मॉर्निंग में.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड it today.

0: दिशा
1: आयुष्मान खुराना की आवाज में आपसे मिलकर अच्छा लगा फ्रॉम द मूवी अंधाधुन व्हेनेवर आई हियर दिस ट्रैक नो मेरे आई डोंट नो व्हाई दिमाग से ऐसा निकलता है कि कितनी देर तक लगेगा यही तो सवाल है वेल कोशिश यही रहती है कि लगता ही रहे बट यू नो पीपल टेस्ट योर पेशेंस राइट यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर एंड वी हैव गॉट अ फ्यू मैसेजेस नाजरी जी का मैसेज है कहती है मॉर्निंग्स आर प्लेन एंड सिंपली A lot easier to face when you've got a friend like you in your life. Thank you for all the laughs, the advice that works if I actually follow it and the honest talk. Good morning. That is so sweet. I hope ki jo advices main de rahi hu aur main agar kuch aisa bata rahi hu kuch to experience hi hote hain but mostly if I have read something and I'm sharing to main yahi umeed karti hu ki aap bhi follow karo aur main bhi follow karu. Hum ek hi nahi hai, hum sawar hai mere dost. And Shashikant Patil ji ka message hai, good morning. May your day be filled with happiness. Peace and success. Have a wonderful day. Wishing you the same. Sandhu ji ka bhi message hai. Good morning. Wishing you a day as bright as your smile. May this week be everything you hoped for and more. Have a fantastic day. God bless you all. Harpal Sandhu from the Consecrate. Thank you so much, Sandhu ji. And yahan pe mujhe Satish Kumar ji ka message aaya hai. And okay, so he has sent me a picture of his morning run and bhai crazy 8.08 kilometers 1 hour I can't even imagine itna bura hal ho gaya hai is waqt kyunki bilkul hi koi you know exercise koi aise activity nahi ho raha hai ki jisme thoda bahut bhi burnout ho and you know stamina build up ho stairs chadh ke saanse phul jati hai meri and then mujhe 5 minute ka break lena padta hai so yeah I think Satish ji thank you so much mujhe motivate karne ke liye I'm going to try to do something at least zyada nahi to something to banta hi hai na and yahan pe mujhe Zulfi ji ka bhi message hai good morning may your day be filled with calm energy grateful thoughts and opportunities that lead you closer to your dreams believe in good ahead indeed we all should believe in good ki sab badhiya yoga dekho अगेन सेइंग द सेम थिंग अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं अगर हम डाउन्स को लेकर बैठ जाएंगे तो अप्स को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे सो लेट्स नॉट स्टक टू द डाउन्स ठीक है सुधरिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या पर ये बात है

0: Biryani belly? Bye bye. Flabs instead of abs? Not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan. September 18th, 7 PM. And bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Saleem and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
0: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
0: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

तनिषा कमाल खान साहब की आवाज में किस्मत मूवी से बेहद प्यारा गाना आवाज ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर No, I do not like it. It's 32 degrees right now and it feels like 43 degrees. What is this behavior? Back to it again. Well, मैं बस अपने आप को और दूसरों को ऐसे ही तसल्ली देती रहती हूँ कि जल्द ही विंटर आ जाएगा और हमें राहत मिलेगी. मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि थोड़ा फॉगी हो सकता है, यू नो, रात में एंड ऑल. सो विजिबिलिटी हैम्पर हो सकती है. सो प्लीज़ ड्राइव वेरी केयरफुली मेरी जान. एंड बाकी पूरे दिन के लिए यही है, अगेन स्टे हाइड्रेटेड और जितना ज़रूरी ना हो अगर तो बाहर ना निकलें, अपना ख्याल रखें और लाइट खाना खाएँ, ठीक है? और कहीं निकल रहे हैं बाहर तो पानी ज़रूर साथ रखिए. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. जी हाँ, सेंडिंग fresh song of the hour for you. Stay tuned and Jio Bindas. Radio.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग RJ तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

wonderful track in the voice of Bilal Saeed and Sunanda Sharma. Rockstar se cult classic. और देसी तड़का तो बनता है मेरी जान. वेल फिलहाल वक्त है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का. रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज. सो आज का जो सवाल है वो है, व्हाट कम्स वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ मोमेंट, बट नेवर इन अ थाउजेंड इयर्स. ध्यान से सुनिए, व्हाट कम्स वंस इन अ मिनट, twice in a moment, but never in a thousand years. क्या चीज़ है ऐसी जो कि एक बार मिनट में आती है, बट दो बार मोमेंट में आती है, लेकिन थाउजेंड ईयर्स में कभी नहीं आती. बताएं 3311 1063 पर. देखें आप समझ पाते हैं या नहीं इस सवाल को. आप कॉल भी कर सकते हैं 4444 1063 पर. सेंडिंग खोसला रघु की आवाज़ में बड़ा सुंदर गाना मिले जो सुकून. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Denisha. Denisha. You're listening to Radio 11.6.3 FM. Denisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. अकाशा शर्मा और नीति मोहन की आवाज में थिया सुना आपने भारत मूवी से.
1: Radio 11 presents Blackboard Stories.
0: And the question today was, what comes once in a minute, twice in a moment, and but never in a thousand years? And we've got answers over here. So, सबसे पहले correct answer दिया है मुझे इद्रिस जी ने. जी, and then I have messages from Surya, Resh, Kizar, AP, Imad, and then dot है इनके नाम में सिर्फ, nothing else is there. There is Michelle, there is Stanny, and Reva. और सबने सही जवाब दिया है. जी हाँ. सो मिनट में आता है एक बार एम, मोमेंट में आता है दो बार एम, और थाउजेंड इयर्स में एक बार भी नहीं आता है एम. हाँ जी. सो यस, यू गिव द करेक्ट आंसर. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दैट. आई एम गिविंग यू अ जबरदस्त हिट. जी हाँ, सुंदर रेडियो ऑल जियो बिंदास.
2: अब सुनिए

0: Pampanga's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मेजराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मेजराटी है आपकी पूरी फैमिली के

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Delisha.
1: Delisha. Mohit Chauhan or Rehman Sahab? Magic. Nada Parinde from the movie Rockstar. And you're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha hai aapke saath. Bindas morning chal raha hai yahan par. And Asma ka good morning aaya hai. Saath mein Swapnil ka message aaya hai mujhe. Hi Tanisha, what a song you made my day. I think he's talking about Udidi Fira, jo Nada Parinde ke pehle aaya tha. And even if you're talking about Nada Parinde, to dono pe suit karta hai. I am glad that I made your day by those beautiful songs. And Ministry of Transport ne announce kiya hai दोस्तों कि there are you know licensed authorized transport services apps जो हैं हम use करते हैं you know to go here and there वो कुछ selected ही हैं so उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ. इनके अलावा अगर आपको कुछ और किसी भी और कैब सर्विस को आप यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स नॉट ऑथराइज, दैट इज़ नॉट लाइसेंस्ड और वायलेशंस हो सकते हैं उनके और उसके रेपरकशंस आपको भी झेलने पड़ सकते हैं. सो ओनली यूज़ दिस वंस. ओके, ऊबर, बदगो, अबीर, कारवा, राइड, इजी गो, वी आर टू गो, आई ड्राइवर, वसल गो, क्यू ग्लाइड, बी ड्राइव, दैट्स ऑल. These are the authorized cab services which you should be using apni safety aur you know apni bhalai ke liye. ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना. सेंडिंग देसी गर्ल्स फॉर यू और लौट कर आती हूँ. एक इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे कुछ ही देर में. ठीक है, सुन रही हूँ रेडियो ऑल ऑफ यू.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: Tanisha.
1: Madhushirma ki awaaz mein saaso ki mala from the movie Mirzapur only on Radio 11.06.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal rahe hain yahan par aur is weekend maine Mirzapur dekh hi dali. Bhai badhiya storyline banaya hai. Bilkul disappoint nahi kiya. Jis tarah se jo last season aaya tha Mirzapur ka usme to I was really annoyed ki bhai faltu story ko jo na stretch kiye ja rahe hain. Zarurat hi nahi hai iski. Lekin ho raha hai aur hum dekh rahe hain. But this movie was really good. बहुत बढ़िया है अगर नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं ठीक है. Also Ministry of Education and Higher Education ने दो नई policies introduce की है government schools और kindergartens के लिए. So जो school program और activity policy है वो ये है कि you know it should create one standard system for planning and managing school activities. और उसके साथ साथ जो activities हैं वो safe होनी चाहिए, high quality होनी चाहिए and suited for students' interest and abilities होनी चाहिए ठीक है, accordingly होने चाहिए उसके. Also it should focus on national identity, citizenship, responsibility and community participation. Along with that, it should be connecting classroom learning with extracurricular activities. I think that's the best way to, you know, learn and to understand things. जब आप classroom के साथ साथ extracurricular में भी ध्यान दे रहे हैं और वो classroom की जो activities हैं, जो learning है, वो हमारी on ground भी जा रही है. वो best होता है, I feel. Students' behavior management policy. So school should focus on creating a safe discipline and positive school environment and rights or responsibilities jo hai students ki, teachers ki, parents ki aur baki school members ki wo ekdam clearly define honi chahiye so that kisi ko koi confusion nahi hoge are bhai ye to mera kaam nahi hai. No. And also clear or progressive procedures for dealing with behavioral issues introduce karne honge, usko kis tarah se handle karna hai, uske liye proper management chahiye. So basically ye jo nayi policies introduce ki gayi hai, it is only for students' well-being, unke डेवलपमेंट और एजुकेशनल एक्सपीरियंस को सेंटर में रखते हुए बनाई गई है एंड दैट इज रियली अमेजिंग एंड काफी बच्चों को इससे फायदा होगा. इनफैक्ट पेरेंट्स भी काफी खुश होंगे इससे. ऑन दैट नोट सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे जग से लार्ज स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो 11.06.3 एफएम.

0: आरजे तन्वीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस Maserati फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक Maserati है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: Maserati freshly from Qatar
4: Hello to all the listeners of

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Qatar, are you ready? This weekend, तैयार हो जाओ. Nesto के crazy figures offer के लिए. Shop at Nesto now for just 5, 10 and 15 Qatari riyals. A huge space filled with wide range of products and most items are available for 5, 10 and 15 riyals. इस promotion का फायदा आप सिर्फ 10 September से 13 September तक ही उठा सकते हैं. Weekend shopping, यानी Nesto पर shopping.
2: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 p.m. and bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
5: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: Tanisha.
1: मैं हूँ मूवी से बहुत ही कमाल गाना ओनली ऑन रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड कुछ बहुत अमेजिंग हो रहा है कतर में. सो मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी ने 94% तक काम खत्म कर दिया है फॉर इट्स नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर ओपन एंड रिक्रिएशनल एरियाज. सो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे नए नए रिक्रिएशनल डेस्टिनेशंस देखने को मिलेंगे, पार्क्स देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, देयर विल बी ग्रीन कॉरिडोर थ्रू आउट द कंट्री एंड बहुत सारी और भी अब अट्रैक्टिव और एक्सेसिबल और यूजफुल पब्लिक स्पेसेस देखने मिलेंगी रेजिडेंशियल एरियाज में एंड दैट इज रियली अमेजिंग. सो बेसिकली मोर ग्रीनरी, क्लीनर फ्रेश एयर सराउंडिंग, बेटर अर्बन इन्वायरमेंट्स, साथ में इट विल एनकरेज यू टू मूव बिकॉज न्यू पार्क्स आर कमिंग अप एंड देन वेदर भी बेटर हो रहा है. तो ऑब्वियसली हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है, उसमें ये हमें ऑब्वियसली हेल्प करेगा बेटर मेंटल वेल बींग. जी हाँ, अगर आपके पास ईजिली एक्सेसिबल आउटडोर स्पेसेस हैं और आप वहाँ जाके रिलैक्स कर रहे हैं और योर मे बी वॉकिंग फॉर अ वाइल, स्पेंडिंग टाइम विद your friends or family out there in nature, तो जो stress है वो कम होता है. सो उससे आपका mental well-being बना रहेगा and there's a lot more amazing things coming up in Qatar super soon. तो बढ़िया एकदम time और भी आने वाला है.
2: दिल में जो बात है कह दूं, do you really feel the way I do? Love you,
1: we all should say this to Qatar, no? आई बेट कि जब ये गाना आया होगा ना चुनरी चुनरी, सबको बहुत क्रिंज लगा होगा एंड राइट नाउ इन दिस एरा वी आर कॉलिंग इट कल्ट क्लासिक. What a beautiful fusion, yaar. Sending all these tracks your way, Sudhri Radio Olive, to you, Bindas Meri Jaan.

0: 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

कतर. आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए. शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स. अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स. इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं. वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: बरेली की बर्फी से स्वीटी तेरा ड्रामा यार बड़ी क्यूट मूवी थी ये भी. इफ यू हैवंट वॉच दिस आई वुड सजेस्ट देखो, ये नेटफ्लिक्स पे है ऑलरेडी. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर.
1: ये है चलती फिरती डिक्शनरी.
0: सो आज का जो वर्ड है, देखो हम सब ये चीज़ें सोचते हैं ठीक है, बट वी डिड नॉट नो कि इसके लिए एक वर्ड एग्जिस्ट करता है. एंड इट्स जस्ट टू यू नो लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में, लेकिन वी डोंट रियली वॉन्ट दैट टू हैपन. ओके, सो मैं जब छोटी थी तो आई यूज टू वॉच दिस शो, सोनी टीवी पे आता था, सावधान रहें सतर्क रहें, समझ रहे हो ना. या सो आई यूज टू वॉच दैट शो अ लॉट, मतलब पूरा पूरा दिन उसके रीरन्स चलते रहते थे और मैं देखती ही रहती थी. माई मदर वुड कॉल्ड मी कि भाई क्या देख रही है तू, दिमाग खराब है क्या तेरा, यही चीज़ें चलती रहेंगी दिमाग में. एंड एक्चुअली ट्रू, सो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर कुछ हुआ ऐसा, यू नो वी आर स्लीपिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड ऐसे कोई थीफ वगैरह आ गए घर पे, तो मैं किस तरह से अपनी फैमिली को बचाऊंगी. मैं हूँ कुछ ऐसे 12-13 साल की बच्ची और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे बचाऊंगी अपनी फैमिली को, यू नो. सो बेसिकली द डिजायर टू एक्सपीरियंस समथिंग विच विल, यू नो, अ कैटास्ट्रोफ विच विल kind of, you know, break the monotony of your routine and which is something intense also or disastrous bhi ho sakta hai. That feeling is called laxism. Yes. And आप भले ही मानो या ना मानो, हम सब ये करते हैं, मुझे पता है. द स्पेलिंग इज LACHESISM, लैकिसिज्म. नाउ टेल मी कि आपने क्या सोचा है ऐसे ये लैकिसिज्म के चलते, जरा बताएं मुझे 3311106 पर. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ थ्री.

0: unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में कुछ कुछ होता है मूवी से कमाल गाना, काफी सारी ऐसे नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आ गई। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 11.6.3 एफएम, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। टिक टॉक, टिक टॉक, इंस्टाग्राम एक और फालतू अपडेट लेकर आ गया है। जी हाँ, कुछ कुछ होता है इन्हें बीच में, है ना, कि आपने देखा मैंने क्या किया कुछ कुछ होता है इन्हें बीच बीच में, एंड रैंडमली कुछ भी वियर्ड से अपडेट्स लेकर आ जाते हैं जो किसी काम की नहीं है। नाउ जो अपडेट लेकर आए हैं वो ये है कि जो टैग्ड पिक्चर्स होती है ना इंस्टाग्राम पे, लाइक किसी फ्रेंड ने आपको टैग किया है तो वो अलग से एक लास्ट वाले टैब में जाती हैं आपकी, जब फीड पे कोई आकर देखता है आपकी प्रोफाइल तो, राइट, लेकिन वो आप अपने खुद के ओरिजिनल फीड पे अब ऐड कर सकते हैं सिलेक्ट करके। क्यों? मैं तो चाहती हूँ कि मुझे टैग ना किया जाए, और यूजुअली ऐसा ही होता है जिन पिक्चर्स में टैग किया जाता है वो दिखाने लायक होती नहीं है, इसीलिए उसका टैग एक्सेप्ट नहीं करा जाता कई बार तो। एंड दे आर आस्किंग अस टू ब्रिंग दोस पिक्चर्स ऑन आर फीड। कमाल करते हो यार। कटरीना कैफ ने क्या कमाल डांस किया था इसमें, एंड रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे इनिशियली कहा गया था यू आर जीरो इन एक्टिंग एंड डांसिंग स्किल्स आल्सो। एक्टिंग पे मैं कमेंट नहीं करूंगी, पर डांस में तो कमाल है यार वो।

0: डेयरिंग देख रहे हो आप मेरी, संडे मॉर्निंग को कह रही हूँ मैं डिस्को कर लो, नहीं बस इस फील में इस एनर्जी में हमने रहना है पूरे हफ्ते, सो दैट वीकेंड को बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे यार। All these amazing tracks are coming up your way, Sundar Radio, all of Jio Bindas.
1: अब सुनिए

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

Tanisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Bindaas Morning chal raha hai yahan par, and it's the time to remind you that you, if you haven't followed us on social media yet, you might be missing out on a lot of things. So, फटाफट से जाइए radioolive.qs the handle, जाकर follow कर लीजिए और check out कीजिए हमारी post, interact कीजिए उसके साथ. And this week, this Saturday, yesterday, जो आपने agents of happiness और you know executive lens जो पॉडकास्ट हमारे सुने होंगे फ्राइडे और सैटरडे को, उसका फुल वीडियो, फुल कॉन्वर्सेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर चले जाइए, वहाँ पर आपको वो भी मिलेगा. एंड आई हैड एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर अंशुल नंदा, और उन्होंने लीडरशिप के बारे में एंड यू नो हाउ टू वर्क विद अ टीम व्हेन यू आर लीडिंग इट बट दे शुड नॉट बी फीलिंग दैट यू आर फोर्सिंग योर आइडियोलॉजीज ऑन देम, उसके बारे में बात की. और बहुत कमाल कॉन्वर्सेशन थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे. सो अगर आपने वो कॉन्वर्सेशन यहाँ ऑन एयर मिस कर दिए तो जाइए हमारी यूट्यूब पर चेकआउट कीजिए. एंड ऑल्सो टू ऑल द पीपल आउट देयर लाइक एचआर्स, बॉसेस, इफ यू गाइज आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, तो आपके एम्प्लॉयज जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो भी एक छोटा सा ब्रेक तो डिजर्व करते हैं, राइट? पर उन्हें ब्रेक देने के लिए कहीं जाने की बजाय ब्रेक को ऑफिस में लेकर आया जाए तो कैसा रहेगा? वी कैन ब्रिंग दैट ब्रेक फॉर देम हैप्पीनेस लाउंज के जरिए. ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क की टीम आपके ऑफिस आएगी हैप्पीनेस लाउंज के लिए, और बहुत ही बढ़िया इंटरैक्टिव गेम्स और एक्टिविटीज वील ऑर्गेनाइज, एंड इट विल बी अ यू नो रिफ्रेशिंग सेशन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज ओवर देयर, बिकॉज देयर विल बी इंटरैक्शन, लाफ्टर, गुड वाइब्स और मजा आने वाला है. दे विल बी री एनर्जाइज्ड, रीचार्ज, और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो और भी बढ़ जाएगी. तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके ऑफिस आएं और हैप्पीनेस लाउंज कंडक्ट करें तो फटाफट से मैसेज कर दो मुझे 3311 1063 पर. स्टे ट्यून्ड.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Tanisha.
1: That was Tare Viyu by Farak and independent artists जो इस वक्त कमाल कर रहे हैं ना right now, मतलब इतने खूबसूरत गाने, इतने relatable and so deep and profound, पर वो चीजें एकदम normal शब्दों में बोल जाते हैं and it is beautiful. I am in love with the indie scene right now in the music, like this song Tare. क्या खूबसूरत गाना बनाया है यार. You are listening to Radio 106.3 FM, Tanisha RK, Seth Bindas, Mornings चल रहे हैं यहाँ पर. 9:50 हो चुका है क्लॉक में और वक्त हो गया मेरे जाने का. मेरी जान आपसे मिलूंगी कल सुबह 6 बजे. फिलहाल मुस्कान आती होगी आपकी लाइफ को एकदम मस्त टकाटक बनाने के लिए बढ़िया बढ़िया गाने लेकर, बहुत सारी अमेजिंग बातें लेकर. उसके बाद आप सुनेंगे सुदेव को, देन कशिश आएगी आपके पास. जी हाँ, और जो लोग मैसेज करके यहाँ पे पूछते रहते हैं ना कि सिमरन कहाँ है, छुट्टियों पे गई है, जल्दी आने वाली है, डोंट वरी, आपका इंतजार जल्दी खत्म होगा. ठीक है, फिलहाल मैं चलती हूँ. आपसे बस जाते जाते यही कहना चाहूंगी, हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ मेरी जान. ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, छोटी मोटी चीजें होती रहती है मेरी जान. ठीक है, हाँ जी, और स्टे हाइड्रेटेड, लाइट खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को कभी नहीं भूलने का. और बस सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान.

हुंडई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

गुड मॉर्निंग कतर, संडे है और कतर में आज फिर से वर्किंग डे शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात बताइए, क्या संडे को सच में इतना सीरियस होना जरूरी है? सुबह अलार्म बजा, आपने फोन देखा, वीकेंड की फोटोज देखी और फिर कैलेंडर ने याद दिलाया कि चलो भाई वापस काम पर। लेकिन आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज संडे वाली एनर्जी मत लेकर चलिए। संडे को ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे वीक का पहला चैप्टर है, पनिशमेंट नहीं। आज एक छोटी चीज़ ऐसे कीजिए जो आपको जेन्युइनली अच्छा फील कराए। ऑफिस जाते टाइम अपना फेवरेट गाना सुन लीजिए, कॉफ़ी थोड़ा सा अच्छे से पीजिए जो आपको पसंद हो बेसिकली, लंच में कुछ ऐसा मंगवाइए या कुछ ऐसा खाइए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, या किसी ऐसे कॉलीग को गुड मॉर्निंग बोल दीजिए जिसे नॉर्मली सिर्फ ईमेल्स में बात होती है। क्योंकि हमारी पूरी वीक की एनर्जी ना कई बार किसी एक बड़े इवेंट से नहीं, छोटी छोटी चीजों से डिसाइड होती है। सो आज रेडियो ऑलिव पर हमारा संडे रूल बहुत सिंपल है, काम शुरू हो गया लेकिन मूड सरेंडर नहीं हुआ। व्हाट्सएप पे बताइए कि आज आपकी एनर्जी 1 से 10 में कितनी है, और अगर आंसर 3 आया तो कोई बात नहीं, शो खत्म होने से पहले उसको 8 नंबर तक लेकर आ ही जाएंगे। बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है। शुरू कर रहे हैं सुपरहिट गानों के साथ। Stay tuned, Jio.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: शॉपिंग लवर्स इन कतर आर यू रेडी इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग
2: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Akshay Kumar.
5: Hi, this is Anushka Sharma.
6: And I'm Ashwin Vasi.
7: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: किताबों में एक ऐसी कहानी जिसका सवाल सुनकर आप थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाओगे, चुप हो जाओगे बेसिकली। एक किताब है द इमॉर्टलिस्ट, काफ़ी चर्चा में है। अब जो लेकर आई है वो है एक बहुत ही अंडर स्टोरी। कहानी में साइंस और जो हमारा रिश्ता है, साइंस और इंसानों का रिश्ता, उसके बीच में किताब घूमती रहती है और एक बहुत ही खूबसूरत सवाल उठाती है। अगर टेक्नोलॉजी आपको किसी अपने के साथ थोड़ा और टाइम दे सकती तो आप उसकी कितनी कीमत चुकाएंगे? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। क्योंकि हम सब कहते हैं काश थोड़ा और टाइम होता, काश पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम बिता पाते, काश किसी फ्रेंड के साथ एक बार और बात कर लेते, काश उस इंसान को एक बार और देख पाते। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी लिमिटेशन शायद यही है, टाइम जो आप है खरीद नहीं सकते। साइंस हमें ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा कनेक्टेड, ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ज़्यादा साल हमेशा ज़िंदगी के बराबर होते हैं? शायद नहीं। कभी कभी सवाल ये नहीं होता कि हमारे पास कितने साल हैं, सवाल ये है कि जो साल हमारे पास हैं उनमें हम कितने सच में मौजूद हैं। और आज का सवाल थोड़ा सा पर्सनल, अगर आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ के साथ एक एक्स्ट्रा ईयर मिल जाए तो आप किसके साथ वो साल बिताना चाहेंगे? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलम, नंबर इज सेम 3311063। ये है लाइफ मस्त है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.

जब बुक्स की बात होती है ना तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं एंड पिछले हफ्ते मैंने एक किताब की बात की थी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो जॉन ग्रीन का नाम सुनते ही शायद आपको टीनेज लव स्टोरीज याद आती होंगी, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। जॉन ग्रीन की नई नॉवल हॉलीवुड एंडिंग 22 ठीक है यहाँ पर 22 सितंबर को आ रही है और ये जो उनकी पहली ऐसी नॉवल है लगभग 9 साल के बाद जो नया फिक्शन है। कहानी हॉलीवुड की दुनिया में है, यंग एक्टर्स, फेम, सक्सेस और वो दुनिया जहाँ आपकी प्राइवेट जिंदगी भी धीरे धीरे पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। भाई बॉलीवुड में भी हमने देखा है कई बार ना, यू नो सारे जो स्टार्स हैं उनकी प्राइवेट लाइफ भी प्राइवेट नहीं रह जाती और यही एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ से निकलता है, क्या फेम इंसान को ज़्यादा फ्रीडम देता है या फिर कम? और सोशल मीडिया के ज़माने में सेलिब्रिटी होने की ज़रूरत नहीं है, हम में से कितने लोग अपनी ज़िंदगी को छोटा सा वर्जन जो है वो रोज़ इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, कहाँ गए, क्या खाया, क्या पहना, किसके साथ थे। यू नो व्लॉगिंग इतनी फेमस हो गई है इवन इन कतर जहाँ पर हर कोई यू नो वीडियोस बनाता है और मुझे बहुत पसंद है वो। सो फिर कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम खूबसूरत मोमेंट को पब्लिक करना ज़रूरी जो है वो नहीं होता, कुछ मेमोरीज ऐसी भी हो सकती हैं जिसके लिए ऑडियंस की ज़रूरत ही नहीं है और कई सारे लोग ये बात समझते हैं इसीलिए वो सिर्फ वही शो करते हैं जो उनको शो करना है। सो अगर आपको एक दिन के लिए सेलिब्रिटी बनने का मौका मिले तो क्या आप फेम चूज़ करोगे या बोलोगे कि थैंक यू बट मेरी प्राइवेसी मुझे वापस चाहिए? सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर इज सेम 3311063। Stay tuned, Jio Bindas.

0: Saturday. Story of the day.
1: Story of the day. लोग स्टे पॉजिटिव तो कहते हैं लेकिन कैसे रहना है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंड आई होप इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन योर लाइफ. फर्स्टली ये रूल ये उसूल बना लो कि कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना ही नहीं है. मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ चेंज करो इनटू जैसे भी होगा लेकिन हो जाएगा. अर्ली मॉर्निंग्स अपनी स्लो स्टार्ट करो एंड सुबह सुबह फोन से थोड़ी दूरी बनाओ. रोज अपने दिन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर करो एंड लास्टली इज योर माइंड सेट. इसको मजबूत कर लिया तो बस लाइफ फिट है. लोग बाहर सुकून ढूंढते हैं लेकिन एक बार अगर आपने अपने अंदर सुकून ढूंढ लिया तो फिर चाहे बाहर कितना ही केओस क्यों ना हो उससे आपके मूड फीलिंग्स इमोशंस इन सब पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ हैप्पी

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए

आलिया भट्ट को देखकर ऐसा लगता है कि यार काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। आप थोड़ी सी फैशन की बात कर लेते हैं। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। बेज, क्रीम, चॉकलेट ब्राउन, ऑफ वाइट और इस तरह के कलर, और लोग इन कलर्स को देखकर बोलते हैं कि भाई कपड़ों में रंग कहाँ है। लेकिन फैशन की दुनिया में ये न्यूट्रल ड्रेसिंग जो है ये एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बन चुकी है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल कलर्स जो हैं वो आपको आउटफिट से ज्यादा सिलोहट्स, फैब्रिक, पर्सनालिटी पर फोकस करने का टाइम देते हैं। सो एक सिंपल सा बेज ब्लेजर, व्हाइट शर्ट, चॉकलेट ट्राउजर, गोल्ड ज्वेलरी और बस पूरा लुक एक्सपेंसिव लगने लग जाता है बिना कुछ किए। और शायद फैशन की एक मैच्योरिटी यही है कि अब आपको अटेंशन लेने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, न्यूट्रल पहनना और बोरिंग दिखना ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। अगर स्टाइल शायद कलर में होता तो ये इतना ईजी नहीं होता, कॉन्फिडेंस में होता है हमारा स्टाइल। तो फैशन लवर्स, आपका वार्डरोब किस कलर से भरा हुआ है? ब्लैक, व्हाइट, बेज या फिर कलरफुल कलर्स? सो आप जब भी कपड़े खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आपकी नज़र किस चीज़ पे पड़ती है या किस कलर पे पड़ती है? मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई पर्सनली लाइक न्यूट्रल कलर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म तक थोड़ा सा साथ देंगे, मतलब ऐसे बोरिंग नहीं लगेंगे। बाय द वे मैंने एक फोटो देखी थी आलिया भट्ट की, इसीलिए मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही बेज कलर का प्यारा सा कॉर्सेट और पैंट पहना हुआ था एंड शी वॉज लुकिंग सो प्रिटी। कोई ज्वेलरी नहीं थी, कोई तामझाम नहीं था, बट स्टिल शी वॉज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। और ये देखकर मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर चाहिए आपको कॉन्फिडेंस। You are listening Radio Olive. मैं हूँ मुस्कान. Stay tuned. Jio. Bindaas.

एक बहुत ही अमेजिंग सा इंडियन फैशन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ ट्रेडिशनल फैब्रिक्स ना बार बार फैशन में आ जाते हैं? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। और इस टाइम पर लहरिया आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, क्योंकि इंडिया में जो ये मानसून सीजन आता है, और लहरिया जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है। राजस्थान की ये वेव लाइक टाई डाई टेक्निक ना अपने कलरफुल फ्लोइंग पैटर्न्स के लिए बहुत जानी जाती है। और अभी ये लहरिया करीना कपूर ने पहना था, जो कि जुबेदा में करिश्मा कपूर ने पहना था, उसी को सेम उन्होंने रिपीट किया। और जब कोई सेलिब्रिटी से पहनता है तो अचानक वही पुराना टेक्सटाइल ना फिर से ट्रेंड बन जाता है। लेकिन एक्चुअली सवाल ये है कि सिर्फ फैशन का ट्रेंड नहीं, इंडियन टेक्सटाइल की खासियत भी यही है कि पैटर्न के पीछे एक क्लाइमेट होता है, एक क्राफ्ट होता है, एक कम्युनिटी की कहानी होती है। यानी साड़ी ना सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो एक कल्चरल लैंग्वेज भी है, जहाँ पर ग्लोबल फैशन में हेरिटेज शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे लिए हेरिटेज ना कोई म्यूजियम में रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हमारी दादी की अलमारी में भी हो सकता है, वो हमारी एक पुरानी साड़ी में भी हो सकता है, एक हैंड वूवन दुपट्टा में भी हो सकता है, मम्मी के किसी सूट में भी हो सकता है। और फनी बात यह है कि जिस चीज़ को हम घर में पुरानी समझ कर रख देते हैं, कुछ साल बाद वो फैशन उसे बोलता है कि यह है विंटेज। तो आप बताइए कि आपके घर में ऐसी कौन सी पुरानी चीज़ है जिसे आज फैशन वर्ल्ड में देख कर आप बोलोगे कि वेयर डिड यू गेट दिस। सो 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: Olive
0: Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: एक किशोर कुमार की आवाज और एक अनएक्सपेक्टेड फैन, अब थोड़ी पुरानी बॉलीवुड की गलियों में चलते हैं। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है। हाल ही में आपको तो पता ही है कि इंडिया में ब्रिक्स चल रहा है और वहां पर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक आइकॉनिक किशोर कुमार का गाना गाया, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। और उनका बॉलीवुड म्यूजिक से कनेक्शन भी नया नहीं है। अब सोचिए, एक इंटरनेशनल लीडर और चॉइस किशोर कुमार, लेकिन इसमें सरप्राइजिंग क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी कल्चरल पावर में से एक शायद यही है कि इसकी म्यूजिक लैंग्वेज ना सब जगह पर हर कोई पहचान जाता है। किशोर कुमार की आवाज में ट्रेजेडी भी थी, रोमांस भी था और बहुत सारी नई नई चीजें, और वो एफर्टलेस चार्म भी था जो आज भी लोगों को कनेक्ट करता है। तीन देवियों का जो ख्वाब हो तुम सिर्फ एक रोमांटिक सॉन्ग नहीं था, उस दौर का ना म्यूजिक स्टोरी टेलिंग का हिस्सा था। और आज भी जब वो सॉन्ग बजता है तो हमें सिर्फ मेलेडी नहीं सुनाई देती, एक पूरा सिनेमैटिक एरा सुनाई देता है। सो आज एक म्यूजिकल चैलेंज आपको देखती हूँ। अगर आपको किशोर कुमार का सिर्फ एक गाना चुनना हो जिसे आप हमेशा सुन सके, तो वो कौन सा होगा? पल पल दिल के पास, बहुत सारे लोग इस जवाब को देने वाले हैं, या फिर खाई के पान बनारस वाला, या फिर मुसाफिर हूँ यारो, कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या कोई और? व्हाट्सएप पर मुझे बताइए 3311063 पर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड टू यू बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

आप बताइए कि आज के बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए क्या चाहिए? फॉलोअर्स, ओपनिंग कलेक्शन, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, इंस्टाग्राम। लेकिन 60s और 70s में पिक्चर थोड़ी सी अलग थी। तब सुपरस्टार सिर्फ एक्टर नहीं होते थे, उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती थी। राज कपूर का अपना एक वर्ल्ड था, देवानंद की अपनी एक स्टाइल थी, दिलीप कुमार की अपनी एक इंटेंसिटी थी, और अमिताभ बच्चन आए तो एंग्री यंग मैन सिर्फ कैरेक्टर नहीं रहा, पूरी जनरेशन की ना इमोशन बन गया। यही फर्क है सेलिब्रिटी और कल्चरल आइकन में। सेलिब्रिटी को लोग देखते हैं, आइकन को लोग कॉपी करते हैं, उनकी हेयर स्टाइल, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके कपड़े और उनका एटीट्यूड तक। और शायद इसी वजह से पुराने बॉलीवुड स्टार्स ना आज भी रेलेवेंट हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिल्म्स नहीं बनाई, उन्होंने पर्सनालिटीज क्रिएट की। और आज के टाइम पे ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं। यू नो, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं हम ये सब देख के। अगर आपको 70s और 80s के किसी बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ एक कॉफ़ी पीने का मौका मिल जाए तो आप किसके साथ बैठना पसंद करोगे? अमिताभ बच्चन, रेखा, देवानंद, शर्मिला टैगोर या कोई और? व्हाट्सएप करके बताइए 3311063 पर। बाय द वे, मेरी चॉइस मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसे के साथ बैठूंगी जिसकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा हो, अप्स एंड डाउन्स रहे हो, जिनकी लाइफ मतलब हर कोई जानना चाहता है। सो यू टेल मी कि आप किसके साथ कॉफ़ी पीना चाहेंगे। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

रहते हैं लेकिन कैसे रहना है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंड आई होप इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन योर लाइफ फर्स्टली ये रूल ये उसूल बना लो कि कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना ही नहीं है मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ चेंज करो इनटू जैसे भी होगा लेकिन हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग्स अपनी स्लो स्टार्ट करो एंड सुबह सुबह फोन से थोड़ी दूरी बनाओ रोज अपने दिन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर करो एंड लास्टली इज योर माइंड सेट इसको मजबूत कर लिया तो बस लाइफ फिट है लोग बाहर सुकून ढूंढते हैं लेकिन एक बार अगर आपने अपने अंदर सुकून ढूंढ लिया तो फिर चाहे बाहर कितना ही केओस क्यों ना हो उससे आपके मूड फीलिंग्स इमोशंस इन सब पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ हैप्पी

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

इंटरनेट पर ना कोई चीज नॉर्मल रह ही नहीं सकती। किसी सेलिब्रिटी ने कुछ पहना, वो ट्रेंड बन गया। किसी ने कोई डायलॉग बोला, ट्रेंड बन गया। एक फूड वायरल हुआ, ट्रेंड बन गया। और कोई पुराना गाना वापस चला, ट्रेंड बन गया। और फिर हम सब देख देख कर बोलते हैं, ये तो मुझे पहले बहुत पसंद था। लेकिन इसके पीछे ह्यूमन बिहेवियर की एक इंटरेस्टिंग बात है, बताती हूँ मैं आपको। हम नेचुरली ना दूसरों के संकेत लेते हैं। मतलब ऐसे अगर बहुत सारे लोग किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि कुछ तो अच्छा होगा ही। अगर कोई किताब बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है तो हम सोचते हैं कि शायद मुझे भी पढ़नी चाहिए। इसे सोशल प्रूफ बोलते हैं। लेकिन इंटरनेट ने

0: इसे हजार गुना तेज कर दिया। पहले ट्रेंड बनने में महीनों लग जाते थे, अब सब कुछ एकदम वायरल हुआ दो दिन में। मतलब कोई किताब, कोई गाना, कोई टीवी सीरियल, दोपहर तक सब उसके बारे में बात करने लग जाते हैं और शाम तक आपकी मम्मी भी पूछती है ये ट्रेंड क्या है यार। सो आज का सवाल भी यही है कि आपकी आखिरी बार कौन सी ऐसी चीज सिर्फ इसीलिए ट्राई की थी क्योंकि वो हर जगह दिख रही थी, चाहे वो फूड है, फैशन है, कोई गाना है या सीरीज है। मैं हूं मुस्कान और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM और ये है लाइफ मस्त है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये 80s वाला ट्रेंड जो चल रहा था ना, आई डोंट नो व्हाई क्यों चल रहा था, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब और हम सब 80s में दिखना चाहते हैं कि हम 80s में कैसे दिखते थे। सो ऐसे ही बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो वायरल होते हैं और हम बस पीछे दौड़ भाग करने लग जाते हैं। सो यू टेल मी कि आपने वो कौन सी चीज ट्राई की थी जो सब कर रहे थे, फूड, फैशन, सॉन्ग, सीरीज या कुछ और। 3311063 इज माय नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास शॉपिंग लवर्स इन कतर आर यू रेडी इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
2: हाय मैं हूँ सारिका आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: सो ये जो वीकेंड था जो अभी निकल चुका है, जिसके बारे में बात करने में बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि यार मस्त दो दिन की छुट्टी आप सब लोगों ने इन्जॉय किया और मैंने तो इतनी सारी यू नो डिजिटल डिटॉक्स वाली चीज़ें की ना, मतलब फ़ोन को कोशिश किया था कि नहीं चलाऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं चलाई, जैसे कि इंस्टाग्राम सोचा था बहुत कम यूज़ करूँगी, बट देन इंस्टाग्राम की जगह मैंने बहुत सारी शॉपिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ की, बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म चलाया, लेकिन इसी के साथ साथ फिर मुझे लगा कि नहीं यार लाइफ में कुछ तो मतलब चाहिए ना, वीकेंड आपकी खुद के लिए ही तो होता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो एक बार अपना फ़ोन गैलरी खोलिए, कल मैंने खोला था भाई, कितनी सारी फोटोज़ हैं, हज़ारों, मतलब इतनी सारी पिक्चर्स हैं, और कभी कभी उसमें से कई सारी पिक्चर्स हैं जो दोबारा मैंने देखी भी नहीं। हमारा फ़ोन ना अब सिर्फ कैमरा नहीं है, वो डिजिटल मेमोरी बन गया है, बर्थडेज, ट्रैवल, फूड, फैमिली, रैंडम सनसेट, स्क्रीनशॉट्स, मतलब इतने स्क्रीनशॉट्स थे कि मैं सोच रही थी कि मैंने क्यों लिया था ये, और वो फोटो जिसे आपने इसीलिए सेव किया था कि कभी काम आएगी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम मेमोरीज जीने से ज्यादा ना उन्हें सेव करने लग जाते हैं। भाई मैंने तो कल इतनी सारी पिक्चर्स डिलीट किए ना, और फिर मैंने सोचा कि यार हर खूबसूरत चीज को कैमरे में कैद करना जरूरी नहीं होता, कुछ मोमेंट्स ना ऐसे भी होने चाहिए जिनका कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, कोई बैकअप नहीं है। सो यू टेल मी कि आपके फोन में सबसे ज्यादा क्या है, कोई फोटोज हैं, वीडियोज हैं, या फिर स्क्रीनशॉट्स हैं? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

आते हैं उस घर पर जहाँ पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। वैसे तो हर इंडियन घर में ऐसा ही होता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस 20 की। अभी आपने शुरुआती दौर में और कंटेस्टेंट की पर्सनालिटी को धीरे धीरे सामने आते हुए देखा ही था, लेकिन इस बार एक और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है भाई। यहाँ पर कम बैक होना स्टार्ट हो गया है। वीकेंड के वार में सलमान खान ने काजी के करियर जर्नी और स्ट्रगल की बात की, और जॉन जो थे उनके और बॉबी देओल जैसे एग्जाम्पल दिए, जैसे लोग जिनके करियर में एक दौर ऐसा आया जब स्पॉटलाइट कम हुई, लेकिन बाद में उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया। सो यही बात बिग बॉस के बाहर की जिंदगी में भी बहुत रिलेटेबल है। कभी करियर स्लो जाता है, कभी लोग आपको भूल जाते हैं, कभी आपको लगता है कि शायद मेरा बेस्ट टाइम जो था वो निकल गया, लेकिन कमबैक की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वापसी के टाइम आपके पास सिर्फ टैलेंट नहीं होता, आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है, और कई बार ना सेकेंड इनिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। सो यू टेल मी कि आपके हिसाब से जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टैलेंट या फिर टाइमिंग, या फिर वो तीसरी चीज जो हार के बाद वापस आने की हिम्मत बनती है? मुझे बताइए फटाफट से 3311063 पर। और ये मुझे मतलब इतना बढ़िया लगा था ना डायलॉग वीकेंड के बारे में जब काजी और करियर की बात चल रही थी, एंड आई वाज लाइक यार सही बात है, कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मेरा बेस्ट टाइम कौन सा था, कौन सा है या फिर आने वाला है। यू टेल मी 3311063 पर कि आपको क्या लगता है कि जब हम कम बैक करते हैं वो ज्यादा पावरफुल होता है या फिर टैलेंट और टाइमिंग दोनों जरूरी हैं। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

तो कहते हैं लेकिन कैसे रहना है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंड आई होप इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन योर लाइफ फर्स्टली ये रूल ये उसूल बना लो कि कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना ही नहीं है मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ चेंज करो इनटू जैसे भी होगा लेकिन हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग्स अपनी स्लो स्टार्ट करो एंड सुबह सुबह फोन से थोड़ी दूरी बनाओ रोज अपने दिन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर करो एंड लास्टली इज योर माइंडसेट इसको मजबूत कर लिया तो बस लाइफ फिट है लोग बाहर सुकून ढूंढते हैं लेकिन एक बार अगर आपने अपने अंदर सुकून ढूंढ लिया तो फिर चाहे बाहर कितना ही केओस क्यों ना हो उससे आपके मूड फीलिंग्स इमोशंस इन सब पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ हैप्पी पॉजिटिव

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

0: चलते चलते आज एक छोटा सा पर्सनालिटी गेम खेल लेते हैं। बाय द वे, यहाँ से मेरे जाने का टाइम हो गया है। बहुत सारे सुपर हिट गाने मैंने लाइन अप कर दिए हैं, लेकिन जाने का मन तो नहीं करता, बट कोई बात नहीं, आज जाऊंगी नहीं तो कल फिर लौट कर कैसे आऊंगी, बस इसी थॉट के साथ कोई बात नहीं, चली जाती हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। आपके बारे में लोग पहली बार में मिलकर क्या अज्यूम करते हैं, मतलब ये बहुत सीरियस है, कॉन्फिडेंट है, कि बहुत टॉकेटिव है या बहुत रिजर्व्ड है, लेकिन क्या वो सच में है? कई बार नहीं। एक बहुत शांत इंसान अंदर से ना बहुत फनी हो सकता है, जो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है वो अंदर से बहुत नर्वस हो सकता है, और जो हमेशा लोगों के बीच रहता है हो सकता है कि उसे अकेले रहने में ज़्यादा अच्छा लगता हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ना एक स्नैपशॉट है, पूरी फिल्म नहीं है। हम इंसानों को देखकर जल्दी कंक्लूजन निकाल लेते हैं, कपड़े देखकर, बात करने के तरीके से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, और फिर एक छोटी सी मुलाकात से पूरी पर्सनैलिटी सर्टिफिकेट दे देते हैं। सो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, लोगों को कुछ और लगता है पर मैं हूँ कुछ और। सो रेडियो ऑलिव पर ऑनेस्टली मुझे बताइए कि लोग आपको देखकर आपके बारे में सबसे गलत अजम्पशन क्या बनाते हैं। लोग सोचते हैं कि आप बहुत सीरियस हो या फिर इमोशनल हो, सोशल हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कुछ और हो आप। सो आप मुझे बताइए कि आपका सबसे मज़ेदार आंसर क्या है, आपको लोग सबसे मज़ेदार किस तरीके से देखते हैं। 3311063 इज माई नंबर, व्हाट्सएप पर भेजिए कि पीपल थिंक आई एम, यस बताइए, और बट एक्चुअली आई एम वो भी बता दीजिए। देखते हैं आज कितने लोगों की असली पर्सनालिटी जो है वो सामने आती है। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, लेकिन व्हाट्सएप इज सेम 3311063। फॉर नाउ बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.

0: गाड़ी के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
1: मैं वाली कपूर रेडियो ऑलिव यू विद अस
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क
3: रेडियो ऑलिव आवर नंबर 1
4: ऑलिव म्यूजिक मैराथन 1 घंटा non-stop back to back

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई एक साथ बैठकर शुरू करते हैं गानों का सिलसिला, बातों का सिलसिला, कहानियों का सिलसिला, किस्सों का सिलसिला, खबरों का सिलसिला, एक साथ बैठकर वक्त बिताने का सिलसिला। और आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए 3311063 पर। मुझे बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए किक स्टार्ट करते हैं ऑलिव रिचार्ज को और कहते हैं जियो बिंदास।

0: brought to you by
1: Malabar Golden Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry, चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो, बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Golden Diamonds Safari Mall में.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और कुछ दिन से मेरे मन में ना एक सोच ऐसे बैठी हुई है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूं कि यार स्मार्टफोन को मैं छोड़ दूं, कुछ टाइम के लिए त्याग दूं, बेस मॉडल फोन यूज करूं। मगर बहुत सारी चीजें जो है इन्वॉल्व है, इसलिए स्मार्टफोन छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मगर एक्सपीरियंस मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा मेरे एक फ्रेंड का। उसने मुझे बताया था कि उसने कुछ टाइम के लिए स्मार्टफोन को त्याग दिया, एक बेस मॉडल फोन लेके बैठ गया कुछ टाइम के लिए, और बोला कि भाई सुकून, चैन, आनंद, ये जो तीन शब्द हैं इनका अर्थ जो है सही में महसूस किया उसने। उसने बोला कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हट गए और बहुत टाइम ऐसा लगा कि मेरे हाथ में है, मैं बहुत सारी चीज़ों पे अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकता था और उसके साथ साथ अपने अपनों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहा था। और कॉन्स्टेंटली फ़ोन से जब हट के रहने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि यार आसपास बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मेरा जो ध्यान है इतनी सारी चीज़ों पर जाने लगा, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर जाने लगा कि मैं क्या ही बताऊँ करके। तो वो सोच रहा कि वो थोड़ा और टाइम जो है स्मार्टफोन के बिना ही रहे। मगर क्या आप बिना स्मार्टफोन के रह सकते हैं? अगर हाँ तो मैसेज कीजिए 3311106 पर। आयरनी है बट हाँ, कोई बात नहीं, कर दीजिए। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए। शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 एंड 15 कतरी रियाल्स। अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 एंड 15 रियाल्स। इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं। वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, लाइफ में स्टिलनेस अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि इतना सारा केओस हमारे आसपास चल रहा है, भाग दौड़ चल रहा है, तो इसके बीच में थोड़ा सा थम जाना और थोड़ा स्टिल रह पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम अपने लाइफ में स्टिल रह सकते हैं, उसके बारे में मैंने जो है थोड़ा सा सर्च किया। तो सबसे बेसिक बात तो यही आती है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपने सांस पे ध्यान देना, थोड़ा सा स्टेप बैक करना, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें हैं। और डेली हैबिट्स जो हमारे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, उनमें से सबसे पहला है माइक्रो पॉसेस लेना। यानी कि अगर आप ट्रैफिक में हो या फिर कहीं भी ऐसे बैठे हो, तो एक मिनट के लिए पॉज कीजिए, ठीक है, एक मिनट के लिए पॉज कीजिए, थोड़ा ऐसे थम जाइए। दूसरा कर सकते हैं आप स्क्रीन से डिस्कनेक्ट करना, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अपने फ़ोन को कुछ टाइम के लिए हटा के रख सकते हैं, बिना किसी डिजिटल इनपुट के 5 मिनट ऐसे बैठ के देखिए। और तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने रूटीन मोमेंट्स को एंजॉय करना। जैसे अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं, तो चाय पीते वक्त उसके फ्लेवर के बारे में सोचो, उसके वॉर्म्थ के बारे में सोचो, उस पर ध्यान ज़्यादा डालिए। तो ये क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों से हम थोड़ा स्टिल रहने की प्रैक्टिस जो है कर रहे हैं धीरे धीरे। और ऐसे डेली प्रैक्टिसेस जब हम करेंगे तो हम भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे, काफ़ी काम महसूस करेंगे। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Rica starari da cucaru, rica starari da cucaru.

0: Story of the Day.
1: Story of the Day.
2: स्टे पॉजिटिव तो कहते हैं लेकिन कैसे रहना है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंड आई होप इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन योर लाइफ. फर्स्टली ये रूल ये उसूल बना लो कि कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना ही नहीं है. मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ चेंज करो इनटू जैसे भी होगा लेकिन हो जाएगा. अर्ली मॉर्निंग्स अपनी स्लो स्टार्ट करो एंड सुबह सुबह फोन से थोड़ी दूरी बनाओ. रोज अपने दिन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर करो एंड लास्टली इज योर माइंड सेट. इसको मजबूत कर लिया तो बस लाइफ फिट है. लोग बाहर सुकून ढूंढते हैं लेकिन एक बार अगर आपने अपने अंदर सुकून ढूंढ लिया तो फिर चाहे बाहर कितना ही केओस क्यों ना हो उससे आपके मूड फीलिंग्स इमोशंस इन सब पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ हैप्पी

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव.
2: जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: आप सभी को वैसे एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे जो है एक बहुत ही बढ़िया बात आपके साथ जो हम शेयर करना चाहेंगे। देखिए, आजकल के जमाने में ना कई बार लोगों ने मेरे से बात की तो पूछा कि यार काम दिखाना जरूरी है क्या, काम करने से काफी नहीं होता। तो मैं हमेशा इस पक्ष के साथ रहता हूँ कि भाई काम करना ज्यादा जरूरी होता है, काम दिखाना उतना जरूरी नहीं होता। मगर धीरे धीरे धीरे मैं भी रियलाइज कर रहा हूँ कि काम दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक तुम काम दिखाओगे नहीं अपना, जब लोग देखेंगे नहीं कि तुम काम कर रहे हो, तब तक लोग उतना एक्नॉलेज नहीं करेंगे उसे। देखिए भाई, पीआर का जमाना है आजकल, और अपने आप को विजिबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है। फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Hello listeners, my name is Rajpal Yadav, Rajpal Yadav. और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
3: रेडियो ऑलिव नंबर वन
4: हमने लगा और हो जा रिचार्ज
3: ऑलिव रिचार्ज
5: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds ka brand new showroom ab Safari Mall Abu Hamur mein. Ab aap apni purani gold jewelry chahe wo kahin se bhi purchase ki gayi ho bina kisi loss ke exchange kar sakte hain. Sirf Malabar Gold and Diamonds Safari Mall mein.

भाई वर्किंग डे के दिन अगर आप मस्ती करना चाहते हो, चिल करना चाहते हो, फन गेम्स खेलना चाहते हो, बढ़िया तरीके से रिचार्ज और रीएनर्जाइज करना चाहते हो, तो हैप्पीनेस लॉन्च के लिए रजिस्टर करना मत भूलना। आपके ऑफिस में रेडियो ऑलिव की टीम को बुलाइए चिल करने के लिए, मस्ती करने के लिए, मजे करने के लिए। और उसके लिए आपको मैसेज भेजना है HL स्पेस अपने कंपनी का नाम 3311063 पर, और हमारी टीम से एक मेंबर आपको कांटेक्ट करेगा बाकी डिटेल्स के लिए। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने एक आर्टिकल रिसेंटली पढ़ा जहां पे न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं कि मैनुअल कार ड्राइविंग जो है ब्रेन के लिए काफी बढ़िया है। और उसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो थोड़े फैक्ट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जब हम मैनुअल कार ड्राइविंग करते हैं तो ऑटो पायलट को प्रिवेंट करते हैं, गियर को शिफ्ट करना, क्लच को दबाना, एक्सेलरेटर को थोड़ा कंट्रोल करना और ट्रैफिक के फ्लो को एकदम उसके साथ मैनेज करना, ये सब बहुत ही हमारे ब्रेन को जो है ना एक्टिव रखता है, इसलिए हम ऑटो पायलट में नहीं जाते। और ये एक्टिवेशन जो है बेसिकली हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के एक्टिवेशन के कारण होता है। ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करना, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों के साथ एक फिजिकल कोऑर्डिनेशन करना, हमारे ब्रेन के एग्जैक्ट उन रीजन्स को स्टिमुलेट करता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। और उसके साथ साथ ये प्रोसीजरल मेमोरी भी बिल्ड करता है। रेगुलर फिजिकल टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन जो है मेंटल पाथवेज को एक्टिव रखता है, और नॉर्मल कॉग्निटिव डिक्लाइन जो एज के साथ होता है उसको बहुत हद तक ये इम्प्रूव करता है और बेहतर रखता है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि भाई आईफोन ने फाइनली सैमसंग को जो है अपने कंपटीशन की लिस्ट से हटा दिया है। जी हाँ, आईफोन ने सैमसंग और बाकी सारे डिफरेंट फोनों को अपने कंपटीशन की लिस्ट से हटा दिया है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट के साथ उसके नए फोन आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अब सीधा गाड़ियों के साथ कंपेयर कीजिए भाई। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे मैं देख रहा था उसके प्राइस के बारे में, आईफोन के नए नए प्राइस के बारे में। तो आईफोन का जो टॉप स्पेक है, आईफोन डो स्पेशली जो फोल्डेबल फोन है, उसका जो टॉप स्पेक है वो 4.5 लाख के आसपास आ रहा है। और मैंने सोचा कि भाई उस पैसे में एक्चुअली एक गाड़ी खरीद सकते हैं इंडिया में, वो भी नया मॉडल खरीद सकते हैं या फिर सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हैं। मैं सोच के देखिए भाई, एक गाड़ी एक साइड पे और एक फ़ोन एक साइड पे, तो आईफोन जो है बेसिकली अपने कॉम्पिटिशन को सरपास कर चुका है। वो ये कह रहा है कि अब हम छोटी मोटी चीज़ों के साथ नहीं कंपेयर करेंगे, अब सीधा गाड़ियों के साथ। इससे मुझे याद आया, रोल्स रॉयस जो है वो कभी भी मोटर शोज़ में अपने गाड़ियों को डिस्प्ले नहीं करता, हमेशा जो प्राइवेट जेट्स का एक डिस्प्ले होता है या फिर यॉट का डिस्प्ले होता है, वहाँ पे जो है रोल्स रॉयस अपने गाड़ियों को रखता है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि जो बंदा प्राइवेट जेट खरीदने आ रहा है उसके लिए रोल्स रॉयस तो ऑब्वियसली एक इंपल्स बाय हो गई होगा। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर मेरे सामने ऑप्शन रखा है गाड़ी का और आईफोन डुओ का, मैं तो यही सोचूंगा कि भाई गाड़ी ले लेते हैं, जा तो सकते हैं बैठ के कहीं। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया बात आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। वो ये है कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, जानी तो क्या किया, सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे radioolive.qa सर्च कीजिए, वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो उसे फॉलो कीजिए, और ऑलरेडी वहां पे सर्च करने के बाद फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए हमारे कंटेंट के साथ। उसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट हमारे पेज पर आते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि गिफ्ट जीतने के मौके भी हैं। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और

Story of the day. Story of the day. Oh, oh, oh, oh. Story of the day. लोग स्टे पॉजिटिव तो कहते हैं, लेकिन कैसे रहना है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ. एंड आई होप इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन योर लाइफ. फर्स्टली ये रूल, ये उसूल बना लो कि कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना ही नहीं है. मुझसे नहीं हो पाएगा को चेंज करो इनटू जैसे भी होगा, लेकिन हो जाएगा. अर्ली मॉर्निंग्स अपनी स्लो स्टार्ट करो एंड सुबह सुबह फोन से थोड़ी दूरी बनाओ. रोज अपने दिन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर करो. एंड लास्टली इज योर माइंडसेट. इसको मजबूत कर लिया तो बस लाइफ फिट है. लोग बाहर सुकून ढूंढते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने अपने अंदर सुकून ढूंढ लिया तो फिर चाहे बाहर कितना ही केओस क्यों ना हो, उससे आपके मूड, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ हैप्पी

0: मतलब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
3: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
2: ओलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, जबरदस्त इवनिंग शुरू होने वाला है। तो आप भी तैयार हो जाइए जबरदस्त इवनिंग्स के लिए, और यही बोलते हुए हम निकलते हैं। मगर जाने से पहले यही याद दिलाना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

गाइस आई गेस सेनोरिटा को तो नहीं पता लेकिन आपकी कशिश जो है वो यहाँ जरूर आ चुकी है आपको एंटरटेन करने। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। एंड देखिए बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती मजा जो है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड मैं बस ये सोच रही थी कि यार हम जो है फ्राइडे को और थोड़ा सा सैटरडे को भी कितना फन कर लेते ना, मतलब अपना फुलेस्ट जीने की कोशिश करते लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको ऐसा फील कराता है कि यार थोड़ा सा और जो है टाइम मिल जाता तो कितना मज़ा आ जाता ना, मतलब तो हम एकदम बढ़िया लाइफ जी लेते। अगर आप दो घंटे और हमें एक्स्ट्रा दे देते तो हम और जी लेते, लेकिन फिर आपने जो है काम करने के लिए हमें ऑफिस भेज दिया। कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। ऑफिस में भी देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि वाइब ही होती है, आपको चार अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो अलग वाइब लेकर आपके लाइफ में आते हैं, एंड बाकी जो थोड़ी बहुत वाइब की कमी है वो बच जाती है तो मैं पूरी कर दूंगी। 3311063 पर हाई हेलो गुड इवनिंग लिखकर जल्दी से भेज दीजिए। एंड उसके साथ आपको जो है एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है मैं सुनाने वाली हूँ आवारापन 2 से, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना जो है इसे इंजॉय कीजिए। बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास, अभी बहुत सारी बातचीत करनी जो है वो बाकी है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 5:10 दैट इज 5:10 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
3: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
4: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
1: Lovers in Qatar, are you ready? This weekend, tayyar ho jao. Nesto ke crazy figures offer ke liye. Shop at Nesto now for just 5, 10 and 15 Qatari riyals. A huge space filled with wide range of products and most items are available for 5, 10 and 15 riyals. Is promotion ka fayda aap sirf 10 September se 13 September tak hi utha sakte hain. Weekend shopping, yani Nesto par shopping.
5: हेलो नमस्कार मम्मा मिया मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव पर
6: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
7: Zabardast Evening. Zabardast Evening. Make your drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu. Hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: देखिए जी, अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो है दोहा से या कतर से बेसिकली लव हो गया है, तो अभी रुकिए, जैसे जैसे सर्दियां आएगी वैसे वैसे आपका ये जो प्यार है ये गहरा होता जाएगा। वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशुशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, जैसे जैसे हम सर्दियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता जा रहा है। मेरा आना कतर में हुआ था फरवरी में, तो थोड़ी सी सर्दी थी एंड अच्छा लग रहा था, एंड उसके बाद धीरे धीरे मौसम गर्म होता गया एंड मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन इस होप के साथ कि वैसा मौसम जो है वो वापस आएगा, बस मैं जो है खुश हूँ, बस खुश हूँ यार। अब देखिए यार, अगर इस वक्त की टेम्परेचर की मैं बात करूँ ना, तो हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस दोहा में एंड 38 डिग्री सेल्सियस आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है, एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो यार देखो, कंपेरेटिवली जो है वो टेम्परेचर कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी भी बस थोड़ी सी कम हो जाए ना, तो फिर तो मज़ा ही आ जाए, है ना। वैसे अभी देखिए सनसेट जो है वो थोड़े ही वक्त में होने वाला है, तो जल्दी से यार अगर आप लोग मुझे ऐसे सुर्ख से आसमान की फोटो खींच के भेज देंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। क्या है कि अब तो आप लोगों को समझ ही आ गया है कि इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में ना मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता है, तो 3311063 पर आकर जल्दी से मुझे जो है सुर्ख आसमान की और सनसेट की फोटोज़ भेज दीजिए, आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी मैं, और उसके बदले में आपको ज़बरदस्त हिट गाना जो है वो सुनाऊँगी। सो वॉल्यूम बढ़ाकर हमारा ये जो अगला गाना है इसे एंजॉय कीजिए, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

अमेजिंग, ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने मास्टरपीस सा बना के दे दिया है हमें। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफएम, मैं हूं आपकी कसूसन शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पे उठाई। आप देखिए, थोड़ी देर पहले आपसे इतनी छोटी सी इल्तिजा की थी कि जरा मुझे बाहर का नजारा तो दिखा दीजिए कि आखिर इस वक्त बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, आसमान जो है उसका कलर क्या हो रहा है। सो बहुत प्यारी प्यारी जो है मुझे फोटोज मिली है सनसेट की। फहीम जी ने जो है बहुत ही खूबसूरत फोटो भेजी है एंड उसके बाद निर्मिति जी से अगर हम उनका देखें तो उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी फोटो जो है वो मुझे भेजी एंड सभी साथी हाय कैसे हो आप, एंड उन्होंने भी एक बहुत ही खूबसूरत सी सनसेट की जो है फ़ोटो मुझे भेजी है। इस्माइल मियाँ ने जो है वो गुड इवनिंग मैडम लिखा है, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ना ऐसे फोटोग्राफी फ्लॉन्ट करने का जो है एक मौका सा मिल जाता है जब भी हम ये वाला आप सेगमेंट करते हैं कि यार आसमान की ज़रा फ़ोटो भेजिए। एंड मुझे ना काफ़ी मज़ा आता है, जैसे अभी और श्रीनिवास जी ने भी जो है थोड़ा सा देरी से लेकिन बहुत ही आर्टिस्टिक सी फ़ोटो जो है वो भेजी, अपने मिरर में उनका सन सेट जो है वो दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन हमें जो है एक फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन भी करना चाहिए आप सबके बीच में। कैसा लगा आइडिया ज़रा मुझे ज़रूर बताना मैसेज करके 3311063 पर। फिलहाल जब मिला तू गाना जो है आप सबको डेडिकेट करते हुए ज़रा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, तो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो।

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
3: Shopping lovers in Qatar, are you ready? This weekend, tayyar ho jao. Nesto ke crazy figures offer ke liye. Shop at Nesto now for just 5, 10 and 15 Qatari riyals. A huge space filled with wide range of products and most items are available for 5, 10 and 15 riyals. Is promotion ka fayda aap sirf 10 September se 13 September tak hi utha sakte hain. Weekend shopping, yani Nesto par shopping. Nesto,
4: all that you need. Baate nahi, energy ka booster mil raha hai. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
5: Zabardast Evening. Zabardast Evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: पे, बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना,
1: बस चल रहा है भाई.
0: What about you?
1: हाँ चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना.
1: हाँ ठीक है.
0: और तेरा
1: बस चल.

0: रहा है बाकी सब ठीक बस चल रहा है बाकी सब ठीक बस चल रहा है
1: तेरा भी भूलना
0: मेरा भी चल रहा है व्हाट अबाउट यू
1: हाय लिख के दूं क्या

0: सब ठीक बस चल रहा है बाकी सब ठीक बस चल रहा है
1: तेरा भी भूलना
0: मेरा भी चल रहा है व्हाट अबाउट यू
1: हाय लिख के दूं क्या

देखो जी, आना तो पड़ेगा ही, आएंगे तभी तो फिर चुटकी भर सॉन्ग खेल के जाएंगे। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कजुशन, शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, वक्त हो गया है आपके साथ एक छोटा सा प्यारा सा गेम खेलने का, जहाँ पर आपको ना मुझे बस इतना बताना है ये गाना सुन के कि इस गाने का नाम क्या है। और आज जो गाना मैं आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ ना, देखो पहचान तो आप बहुत आसानी से जाओगी ये वाला गाना, लेकिन गाने का नाम, प्रॉपर नाम, जो इस गाने का नाम है वो मुझे बताना है। ऐसा नहीं कि लिरिक्स लिख के दे दिए कि अरे ये तो ये गाना है, पर मुझे जो है इस प्रॉपर गाने का नाम चाहिए। एंड वो जब आप ये गाना सुनोगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर, कान लगाकर, ध्यान लगाकर ये जो गाना है इसे सुनो और मुझे ज़रा सुन के बताओ कि ये जो गाना है ये कौन सी मूवी का है और इस गाने का नाम क्या है।

गया होगा समझ में अब तो क्यों बोल रही थी मैं ऐसा। तो 3311063 इज द नंबर, जल्दी से फोन उठाओ, नंबर जो है वो व्हाट्सएप पे टाइप करो और अपना आंसर जो है ऑडियो नोट या फिर मैसेज में मुझे भेज दो और बता दो कि कौन सी मूवी का जो है ये गाना है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे इस गाने के उस पार, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:11. दैट इज 6:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
3: शॉपिंग लवर्स इन कतर, आर यू रेडी? इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए. शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5, 10 and 15 कतरी रियाल्स. अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5, 10 and 15 रियाल्स. इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं. वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग.
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव.
5: नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर. जियो बिंदास
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

तो देखो जी, अब इतना तो मुझे समझ आ गया है कि सब लोग जो है वो बॉलीवुड के बहुत बड़े वाले जो फैन है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसोशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर जो है उठा रखी। अब देखिए यार, थोड़ी देर पहले आपको एक गाना सुनाया था एंड आपसे पूछा था कि यार इस गाने को जरा पहचान के बताओ, इस गाने का नाम क्या है एंड ये कौन सी मूवी से है।

0: आप अभी तक तो पहचान ही गए होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने जो है हमें मैसेज किया है। वैसे मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगी, ये जरूर बताऊंगी कि सबसे पहले आंसर करने वाले जो लोग हैं वो कौन है। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो अस्मा जी ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है। विनायक जी का ऑडियो नोट अब मेरे पास आ चुका है। जी जी जी है इनका नाम, जिनका नाम है ओ गिरीश जी। गिरीश जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। आतिफ रजा जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। फैजान अहमद जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। एंड और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, फहीम जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो कंग्रेचुलेशंस, आप सबके आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि और सब लोगों को भी मौका मिलना चाहिए मुझे आंसर देने का। सो जल्दी से फ़ोन उठाओ 3311063 पर, मुझे बताओ अगर आपने इस गाने को पहचान लिया है तो। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी एक गाने के उस पार। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

देखिए सुबह तो नहीं हुई है लेकिन शाम जरूर हो गई है और शाम होते ही आपके लिए आपकी कशिश लेकर आ जाती है जबरदस्त इवनिंग। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो जबरदस्त इवनिंग आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, थोड़ी देर पहले जो है मैंने आपसे ये पूछा था कि मुझे एक गाना जो मैंने आपको सुनाया है उसकी मूवी, यानी वो कौन सी मूवी से है एंड उस गाने का नाम क्या है ये बताओ। एक बार और सुना देती हूँ आपको गाना, कि गाना कौन सा था।

तो देखिए यार, जिन भी लोगों ने पहचान लिया है गाना, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन ये जो काम है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार आपने गाना पहचान लिया है, लेकिन इस गाने का नाम जो है वो इस गाने के अभी जो वर्डिंग्स मैंने आपको सुनाया उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। सो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि किस किस ने सही आंसर दिया है। ए पी यानी अनाइता, अनाइता ने ना जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है। मूवी का नाम कभी खुशी कभी गम, गाने का नाम से शावा शावा। इमाद ने हाई कसूस दिखाया अभी, एंड उसके साथ मुझे मैसेज आ गया है अब फराज जी का। फराज जी थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, शावा शावा। K3G जी मूवी का ये ट्रैक है। एंड अब्दुल रहमान जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने जो है मूवी सही गेस करी है, दैट्स कभी खुशी कभी गम, लेकिन सॉन्ग बोले चूड़िया तो बिल्कुल नहीं है, इट्स शावा शावा। एंड इमाद जी ने हाय बोलने के बाद हमें लिख दिया है द सॉन्ग इज़ शावा शावा। यस थैंक यू सो मच आप सबके इन अमेजिंग आंसर्स के लिए। एंड यार मुझे ना सबसे बेस्ट पार्ट बॉलीवुड का तभी लगता है जब कोई फास्ट गाना चल रहा होता है एंड उस फास्ट गाने के बीच में एक इमोशनल या एक रोमांटिक जो है पार्ट आता है एंड उसके बाद फिर से वो गाना जो है फास्ट हो जाता है। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर इस फिनोमेना का मैं अगर बोलूं तो वो होगा से शावा शावा। सो चलिए थैंक यू सो मच आंसर करने के लिए, आप सब सच में बहुत ही बड़े बॉलीवुड वाले फैन हैं। फिलहाल जो है आगे बढ़ते हैं, एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो एंजॉय करते हैं आप सबके रेडियो सेट्स पर। मैं हूँ आपकी कसूर, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Story of the day. Story of the day.
1: स्टे पॉजिटिव तो कहते हैं लेकिन कैसे रहना है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंड आई होप इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन योर लाइफ. फर्स्टली ये रूल ये उसूल बना लो कि कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना ही नहीं है. मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ चेंज करो इनटू जैसे भी होगा लेकिन हो जाएगा. अर्ली मॉर्निंग्स अपनी स्लो स्टार्ट करो एंड सुबह सुबह फोन से थोड़ी दूरी बनाओ. रोज अपने दिन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर करो. एंड लास्टली इज योर माइंड सेट. इसको मजबूत कर लिया तो बस लाइफ फिट है. लोग बाहर सुकून ढूंढते हैं लेकिन एक बार अगर आपने अपने अंदर सुकून ढूंढ लिया तो फिर चाहे बाहर कितना ही केओस क्यों ना हो उससे आपके मूड फीलिंग्स इमोशंस इन सब पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ हैप्पी

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power: Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
3: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
2: ज्यादा वैल्यू के साथ, स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
3: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
2: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
5: Zabardast evening. Make your drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

देखिए जी, बॉलीवुड ने हमें सिखाया है कि आप कितनी तरीके से माही वे बोल सकते हैं. दैट्स द वे, माही वे. और अब एक और तरीका, ये वाला, ये जो इन्होंने करके दिखाया है. वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑल पर मैं हूँ आपकी कजुशन, जो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक को कंधों पर उठा रखा है. अब देखिए यार, बातचीत जो है वो हम करते हैं ऑफिस की, कि आज आप ऑफिस पहुंचे होंगे वीकेंड के बाद, तो थोड़ा सा ऐसा लगा होगा ना यार थोड़ी फन की कमी है, और बस उसी फन की कमी को पूरा जो है रेडियो ऑलिव कर सकता है. जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्क स्पेस और आपके ऑफिस में रेडियो ऑलिव की टीम आए, आरजेज आए, और हम आपके साथ करें बहुत सारा फन, फॉलिक, मस्ती और मजा, गेम्स खेलें, अमेजिंग जो है बातें करें, तो बस जल्दी से जो है HL यानी हैप्पीनेस लाउंज लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 3311063 पर. अगर आप कोई बिजनेस ओनर है या मैनेजर है या HR है, सो आपको तो अपनी टीम के लिए देखो ये वाला स्टेप उठाना ही चाहिए. सो हैप्पीनेस लाउंज लेकर रेडियो ऑलिव की टीम आ सकती है आपके ऑफिस में, तो देरी किस बात की, जल्दी से मैसेज कर दो 3311063. और फिलहाल थोड़ी सी देर में एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: Lovers in Qatar, are you ready? This weekend, tayar ho jao. Nesto ke crazy figures offer ke liye. Shop at Nesto now for just 5, 10 and 15 Qatari riyals. A huge space filled with wide range of products and most items are available for 5, 10 and 15 riyals. Is promotion ka fayda aap sirf 10 September se 13 September tak hi utha sakte hain. Weekend shopping, yani Nesto par shopping.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM बिंदास। गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ये देखिए एकदम नींद खोल देने वाला गाना जो है आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आपकी कसम शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, अगर आप भी मेरे जैसे ही इंसान हैं जिसे रात भर नींद नहीं आती एंड पता नहीं सीलिंग देखते देखते सुबह कब हो जाती है, तो मेरे दोस्त आपको या तो मेहनत करने की ज़रूरत है दिन में या तो फिर जो है एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंड अगर आप कतन में रहते हैं सो ऑफकोर्स आपके लिए ये जो है अहमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने आसान बना दिया है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए नया स्लीप हेल्थ क्लिनिक जो है वो ओपन किया है एंड इसमें जो है आपको स्लीप सपोर्ट मिल सकता है। यानी अगर आप आपको सांस लेने की वजह से नींद नहीं आती है या आपको यू नो इंसोमिया है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है सो वो जो है आपकी ट्रीट हो सकती है। बेसिकली नींद से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अब स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो आपको इस हेल्थ क्लिनिक में मिल सकता है। यार नींद एक ऐसी चीज़ है ना जिसे काफ़ी मतलब यू नो काफ़ी मतलब ध्यान नहीं दिया जाता, काफ़ी हल्के में लिया जाता है बेसिकली एंड इस नींद से बहुत कुछ जुड़ा है। अगर आपको जो है आपका वेट पुट ऑन हो रहा है या अगर आपका वेट बहुत जल्दी गिर रहा है सो वो आपकी अच्छे से नींद ना होने की वजह से हो सकता है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है तो वो नींद की वजह से हो सकता है। आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ गया है सो इसका भी रीज़न नींद ना होना है। नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यार, एक बार को एस्थेटिक्स जो है वो आपके जीवन में ना हो चल जाएगा, फोटोज एस्थेटिक नहीं आएंगी चलेगा, लेकिन नींद जो है वो पूरी की पूरी होनी चाहिए। इसी बात पे नींद के जलवे को जो है हाय बोलते हुए जलवा गाना जो है एंजॉय करते हैं वांटेड मूवी से। मैं हूं आपकी कशिश, अमेजिंग वाला गाना जो है जलवा एंजॉय कीजिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: खातर आर यू रेडी इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5 10 एंड 15 कतरी रियाल्स अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5 10 एंड 15 रियाल्स इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग
1: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
2: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

गाने का नाम देखिए फाइंडिंग हर है, लेकिन इस गाने में एक बार भी उसने फाइंडिंग हर ऐसा कुछ बोला ही नहीं। हम सबको आदत है अक्सर गानों में उसका जो हुक होता है वही गाने का नाम होता है यही सोचने का, और बस इसी चीज से आज मैंने खेला था चुटकी भर सॉन्ग में। आज थोड़ा सा अलग सा गाना जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताओ यार इस गाने का नाम क्या है, एंड सब ने लाइन तो पहचान ली, गाना पहचान लिया, मूवी भी पहचान ली, लेकिन गाने का नाम नहीं पहचान पाए। पर कुछ हमारे बॉलीवुड फैंस हैं जिन्होंने पहचान लिया था। कल फिर से जो है सेम गेम खेलेंगे, तो आ जाना 6 बजे। फिलहाल जो है मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो बनाने आई हूँ। सो अगर इस वक्त आप मुझे ड्राइव करते सुन रहे हैं, गाड़ी में सुन रहे हैं, तो एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। सो मिनिस्ट्री ने एक इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है एंड शाम के वक्त एंड सुबह के वक्त हल्का सा फॉग जो है वो हो सकता है, हल्की सी धुंध जो है वो आज देखने को मिली थी, तो ड्राइव करने में काफी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ड्राइव करते हुए आपको थोड़ी सावधानी जो है वो बरतनी है, अपना तो ख्याल रखना ही है, साथ में दूसरों का ख्याल भी रखना है। सो ड्राइव जो है बहुत रिस्पॉन्सिबली करें, एंड बाकी यार बढ़िया है, मुझे लगता है कि कतर में तो ड्राइव करने में मज़ा आता ही है। सो केयरफुली ड्राइव कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाकियों का ख्याल रखिए, एंड बस एक चीज़ है जो मैंडेट करनी है और वो है रेडियो ऑलिव को सुनना है, आपकी कशिश को सुनना है। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना मस्कारा आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, मैं वापस आऊँगा मूवी से। सो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इन्जॉय करो और कहते रहो जियो जिंदा।

असलम की आवाज में ब्यूटीफुल सा ट्रैक तू चाहिए, एंजॉय किया आपने 106.3 रेडियो वाले पर। वेलकम जी 106.3 रेडियो वाले पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का भी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, वक्त हो गया है आपसे जेन ज़ी डिकोडेड में बातचीत करने का, लेकिन देखो यार आज जो है हम कोई वर्ड जो है वो डिकोड नहीं करने वाले हैं जेन ज़ी डिक्शनरी में से, बल्कि मैं आपको एक रिसर्च बताने वाली हूँ जो जेन ज़ी के बारे में रिसेंटली मैंने पढ़ी है। अब जेन ज़ी जो जनरेशन है, बेसिकली जो जनरेशन जेड है, वो ऐसी कुछ जनरेशन्स में से बन गई है जो सच में अपनी एजुकेशन को पूरा करना चाहते हैं, अलग अलग टाइप के कोर्सेज करना चाहते हैं एंड लाइफ में स्ट्रगल करना चाहते हैं। यस, सो इंटरनेट पे जिस जनरेशन को सबसे ज़्यादा लेज़ी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि यार इनको तो लाइफ में मोटिव ही नहीं चाहिए, वो जनरेशन अब ये प्रूव कर रही है कि नहीं, हमें अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, हमें एडिशनल कोर्सेज भी करने हैं एंड हमें अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी करना है। भले ही बाबा का कितना बड़ा बिजनेस हो, हमें जो है अपना काम करना है, हमें जो है वो करना है जिसमें हमारा मन लगता है, एंड अभी मन लग रहा है, 2 महीने बाद नहीं लगेगा तो फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, लेकिन करेंगे तो हम खुद ही। एंड ये जो है मेजॉरिटी को देख के बेसिकली जो है रिसर्च किया गया है कि यार ज़्यादातर जेंजी जैसे हैं। देखो 4 तो आपको मिल जाएंगे लेज़ी, लेकिन मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो जेंजीज अब हर चीज़ की डेफिनेशन को जो है वो बदल रहे हैं, हार्डवर्क की डेफिनेशन को भी बदल रहे हैं। तो हार्डवर्क का मतलब जो है हमेशा ये नहीं होता कि यार आप 18 घंटे मतलब 18 आवर्स स्ट्रेट एक कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है स्टेयर कर रहे हो एंड फिर उसी को जो है हार्डवर्क कंसिडर किया जाएगा, या बाहर धूप में काम कर रहे हो तो ही वो हार्डवर्क है। नहीं, स्मार्ट रहते रहते भी हार्डवर्क किया जा सकता है, अपनी क्रिएटिविटी को जो है बढ़ाना ये भी हार्डवर्क है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट तरीके का हार्डवर्क है। सो एक बार जेंजीज के प्रोस्पेक्टिव से जरूर सोच के देखिए, बाकी ट्रोल करने का तो हक आप सब रखते हैं। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इंजॉय करो और कहते रहो बिंदास।

0: मेरी मम्मी को ना मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है टीवी सीरियल्स या टीवी शोज जो है वो देखने में कि यार कौन सा वाला चुनना चाहिए और कौन सा वाला ज्यादा बेटर रहेगा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसु संचो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, वैसे तो बहुत सारे शोज जो है वो इस वक्त OTT पे अवेलेबल है, बहुत सारे शोज जो है वो टीवी पे आ रहे होते हैं एंड बहुत कन्फ्यूजन जो है वो हो रहा होता है एंड जब कुछ बच जाता है तो मम्मी जो है यूट्यूब पे पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो देखने लग जाती है। सो इन शॉर्ट कॉन्टेंट बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक शो है जो हमेशा रेंट फ्री हमारे दिलों में रहता है एंड वो है खिचड़ी। एंड खिचड़ी के मेकर्स ने ही जो है एक नया शो बनाया है, दैट इज चुंबक। एंड ये जो चुंबक है, ये पहले मुझे लगा था कि यार ये भी ब्रेन रॉट होगा, आजकल की कॉमेडी जैसे आ रही है ना धमाल 4 एंड ऑल दिस, ये वैसा ही कुछ होगा। लेकिन मैंने एक एपिसोड देखा एंड इट्स रियली रियली रियली फनी। आप जो है धीरे धीरे करके ना एडिक्शन की तरफ बढ़ जाओगे आप जैसे जैसे ये शो देखोगे। सो एक अच्छा एडिक्शन आपको चाहिए, एक अच्छा शो आपको चाहिए, खाना खाते खाते जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा करते थे वैसा वाला कुछ इंजॉय करने के लिए चाहिए। सो चुंबक इज समथिंग जो आपको देखना चाहिए। सो एक बार जरूर चुंबक जो है आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा, ये मस्ट वॉच जो है आप कर लो। कुछ लाइट हार्टेड अपनी फैमिली के साथ देखना चाहते हो, रोज थोड़ा थोड़ा देखना चाहते हो, देखो बिल्कुल अमेजिंग है। और इस कूल एडवाइस के बाद मुझे ऐसा लगता है एक कूल सॉन्ग हमें सुन लेना चाहिए। सो कूल सॉन्ग ऑफ द आर आर आपकी रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम है बटरफ्लाई। जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो आपकी इस बटरफ्लाई यानी आपकी कशिश के साथ। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: सर क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

झनकार बीच से एक-एक आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कंसेशन शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, यानी आपको जो लगता है कि यार ये तो मैंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मुझसे, एंड वो एक बहुत ही मैजिकल लाइफ चेंजिंग स्टेप हो जाए आपकी लाइफ के लिए। यस, मतलब अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कंग्रेचुलेशंस, आप सैफ अली खान के जैसे हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि सैफ अली खान ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये बताया है कि कॉकटेल, जो उनके वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस मानी जाती है एंड उन्हें कॉकटेल 2 में कितना मिस किया गया है ये सभी जानते हैं, सो वो जो है एक गलती थी बेसिकली। उन्हें जब उन्होंने वो मूवी साइन की है, जब उन्होंने वो मूवी की, उन्हें लगता था कि यार ये तो मैंने गलती कर दी, यार ये नहीं करनी चाहिए थी, ये मूवी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी मैंने सोची थी, एंड ये तो मेरे को प्रोड्यूस ही करनी थी, एक्टिंग तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया एंड एक नए दरवाजे जो है वो खोल दिए उनके लिए इस मूवी ने। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी गलती हो जाती है तो होने देनी चाहिए, ठीक है। आपने कोशिश किया कि गलती ना हो, अब हो गई है तो इंतजार करो, ऊपर वाले का जरूर कुछ ना कुछ प्लान होगा उस गलती में भी। मैं हूँ आपकी कशिश, इन्हीं अच्छी बातों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगला अच्छा वाला गाना जो है वो आपको एंजॉय करना चाहिए। सो वॉल्यूम बढ़ाकर गाने को एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Story of the day. Story of the day.
1: स्टे पॉजिटिव तो कहते हैं लेकिन कैसे रहना है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंड आई होप इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन योर लाइफ. फर्स्टली ये रूल ये उसूल बना लो कि कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना ही नहीं है. मुझसे नहीं हो पाएगा कुछ चेंज करो इनटू जैसे भी होगा लेकिन हो जाएगा. अर्ली मॉर्निंग्स अपनी स्लो स्टार्ट करो एंड सुबह सुबह फोन से थोड़ी दूरी बनाओ. रोज अपने दिन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर करो एंड लास्टली इज योर माइंडसेट. इसको मजबूत कर लिया तो बस लाइफ फिट है. लोग बाहर सुकून ढूंढते हैं लेकिन एक बार अगर आपने अपने अंदर सुकून ढूंढ लिया तो फिर चाहे बाहर कितना ही केओस क्यों ना हो उससे आपके मूड फीलिंग्स इमोशंस इन सब पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ हैप्पी

0: देखिए जी, आपकी रोजा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन आपकी कशिश तो हूँ। एंड आपसे दूर जाना जो है वो मुझे बिल्कुल नागवारा सा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल इस पर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड जो आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी थी। लेकिन यार देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते भी इंसान थक जाता है, आप लोग भी थक जाते हैं, मैं भी थक गई हूँ। सो बस अब जाती हूँ, खाना वाना खाऊंगी, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखूंगी और आपको भी बस यही कहने के लिए जो है मोटिवेट करूंगी कि देखिए खाना खाते रहिए और गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, पानी पीते रहिएगा। एंड अगर बाहर निकले तो अगर आपको थोड़ी सी बदली लग रही हो, मतलब धूप जो है वो कम लग रही हो या शाम हो रही हो, तो भी सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। कल सेम टाइम पे यानी शाम को 5 बजे जबरदस्त इवनिंग लेकर जो है वो आपके लिए आ जाऊंगी मैं, क्योंकि कुछ दिन और जबरदस्त इवनिंग पे हमारी बातचीत चलेगी, उसके बाद तो फिर आपको जो है सुबह मुलाकात होगी आपसे 10 बजे, क्योंकि सिमरन की जो वेकेशन है वो खत्म हो जाएगी। फिर सिमरन अपनी वादियों की स्टोरियां लेके आएंगी आपके पास आपसे बांटने के लिए। पर तब तक अगर आपको मेरा शो अच्छा लग रहा है एंड अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, सो 3311063 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर भी आप फॉलो बटन दबा सकते हैं, वहां पर अमेजिंग वाला कंटेंट आता रहेगा सिर्फ आपके लिए। मैं हूं आपकी कशिश, फिलहाल जाते जाते आपको ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो सुना रही हूँ। वेलकम टू द जंगल मूवी का टाइटल ट्रैक है, सो इसे वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, ये

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: Lovers in Qatar, are you ready? This weekend, tayar ho jao. Nesto ke crazy figures offer ke liye. Shop at Nesto now for just 5, 10 and 15 Qatari riyals. A huge space filled with wide range of products and most items are available for 5, 10 and 15 riyals. Is promotion ka fayda aap sirf 10 September se 13 September tak hi utha sakte hain. Weekend shopping, yani Nesto par shopping.

0: ये है मिडनाइट लाउंज,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास ये है मिडनाइट लव।

0: शॉपिंग लवर्स इन कतर आर यू रेडी इस वीकेंड तैयार हो जाओ नेस्टो के क्रेजी फिगर्स ऑफर के लिए शॉप एट नेस्टो नाउ फॉर जस्ट 5 10 एंड 15 कतरी रियाल्स अ ह्यूज स्पेस फिल्ड विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट आइटम्स आर अवेलेबल फॉर 5 10 एंड 15 रियाल्स इस प्रमोशन का फायदा आप सिर्फ 10 सितंबर से 13 सितंबर तक ही उठा सकते हैं वीकेंड शॉपिंग यानी नेस्टो पर शॉपिंग
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

0: ये है मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Yeah.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब, एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

तस्वीर में देखे रंग